0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है.
2: अस्सलामु अलैकुम सामईन, SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में खुश आमदेद. ये नशरियात आप सुन रहे हैं SBS साउथ एशिया पर और मैं हूँ आपकी मेज़बान वर्दा वक़ार. आज जुमे का रोज़ है और सुपहर के 3 बज चुके हैं. मई की 29 तारीख आन पहुँची है, यानी कि ये महीना भी इख्तिताम पज़ीर है. नशरियात में आज क्या कुछ शामिल है ये देखते चलते हैं. हफ्ता रफ्ता में हम आपको सुनवाएंगे हफ्ते भर की खबरों का खुलासा. SBS एग्जामिन्स में सुनेंगे कि क्या खबर आप तक पहुंचेगी ये कौन तय करता है. आपको सुनवाएंगे उर्दू और फारसी के दरमियान पुल तख्लीक करने वाली फायजा इदरीस की कहानी, जबकि आज की नशरियात में स्पोर्ट्स राउंड अप भी शामिल करेंगे. सूफियाना कलाम भी रहेगा नशरियात का हिस्सा जुमे के दिन की मुनासबत से, जबकि गीत भी करेंगे नशरियात में शामिल. लेकिन सबसे पहले मैं और आप मिलकर सुनते हैं हफ्ता रफ्ता और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर समेत ऑस्ट्रेलिया में ये हफ्ता कैसा गुजरा खबरों के तनाजुर में.
1: जल्द ही आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने सोशल मीडिया फीड्स पर कम खबरें मिलेंगी, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि आप SBS की ऑडियो ऐप डाउनलोड करें. उर्दू सामीन के लिए अहम है कि तमाम खबरें, कहानियां, आरा और पॉडकास्ट मिलते रहें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया भर की गैर जानिबदाराना खबरों के साथ साथ कम्युनिटी से और कम्युनिटी के अहम मसाइल से आगाही हासिल करते रहें. SBS ऑडियो ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मुफ्त दस्तियाब है.
2: सामईन, SBS उर्दू पर पेश हैं जुमा 29 मई 2026 का हफ्ता रफ्ता और मैं हूँ वर्दा वक़ार. अमरीका और ईरान मुबैना तौर पर अपनी जंगबंदी को मजीद 60 दिन तक बढ़ाने के लिए एक मुसव्वदा मुहैदे पर पहुंच चुके हैं. हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस मुहैदे को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर नहीं किया है. इस ड्राफ्ट डील, जिसकी पहली बार

एक्सप्रेस ने इत्तला दी है कि सरकारी तौर पर किसी भी फरीक ने तस्दीक नहीं की है। ईरान पाबंदियों से इस्तस्ना और मुंजमद असासों तक रसाई का मुतालबा कर रहा है, जबकि वाशिंगटन चाहता है कि तहरान अपने अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को रोके। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसनेट ने कहा कि वाशिंगटन के मुतालबात में कोई तब्दीली नहीं आई है। उधर कीनिया की रेफ्ट वैली में लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल में आग लगने से कम अज़ कम 15 तालिबात हलाक हो गईं। गिलगिल में हुकूमत के जेर मल्कियत यूटोमेशी गर्ल्स एकेडमी सीनियर स्कूल का इंतजाम और सरपरस्ती कीनिया पुलिस सर्विस करती है, जिसमें बहुत से तालिबे इल्म अफसरान की बेटियाँ हैं। वजीर तालीम जोलिस मेगोस का कहना है कि इस मखसूस आग की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन वालिदैन की एसोसिएशन के नुमाइंदे बर्नार्ड ओमो अंधो का कहना है कि जासूस जिंदा बचाने वाले तलबा से पूछगछ कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके असल वाकया क्या हुआ और क्या स्कूल के फायर सेफ्टी मैनुअल पर अमल किया गया था या नहीं। इधर ऑस्ट्रेलिया में सैनेट के अंदाजों में बताया गया है कि ऑनलाइन तेजी से बढ़ती बुनियाद परस्ती अब AFP को दरपेश सबसे अहम चैलेंजेस में से एक है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट का कहना है कि बुनियाद परस्ती के अमल जो महीनों या साल लगते थे अब दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि नौजवानों को खास तौर पर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और दीगर फोरम्स पर निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने अगले 2 सालों में इस मसले से निपटने के लिए एक कौमी इंसदाद दहशतगर्दी ऑनलाइन सेंटर कायम करने के लिए $74 मिलियन देने का वादा किया है। मोहतरमा बैरेट कहती हैं ये ऑस्ट्रेलिया की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका टीमों के लिए नफरत अंगेज ग्रोहों और दीगर अफराद के बारे में इब्तदाई इंतबाही निज़ाम फराहम करेगा जो तशद्दुद भड़काने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के सफीर को हुकूमत के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ नाकाबिल कबूल खतरात के हवाले से तलब किया है। मिखाइल पेट्राकोव जो अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में रूस के सफीर हैं को हुकाम ने बताया कि रूस की जानिब से हालिया धमकियां कि वो यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैव में इमारतें गिरा देगा बैनुल अक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रूसी खारजा उमूर के महकमे की एक जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका सब्र खत्म हो चुका है और वो गैर मुल्की शहरियों और सिफारतकारों को जल्द अज जल्द कैव छोड़ने की अपील पर कायम है। यूक्रेन के वजीर खारजा आंद्रे सिबाई ने इतिहादियों से कहा कि वो रूसी ब्लैकमेलिंग के आगे ना झुके। कैपिटल गेन्स टैक्स में रियायतें और मनफी गियरिंग में मुतनाजा तब्दीलियां पार्लियामेंट में पेश की गई हैं। सरमायाकारों के टैक्स छूट को महदूद करने की तजावीज को कारकुनों के लिए सालाना $2,500 टैक्स रिबेट और $1,000 की मियारी टैक्स कटौती के साथ एक ही बिल में शामिल किया जाएगा जो ट्रेजरर जिम चार्मर्स ऐवान नुमाइंदगान में पेश करेंगे। उन्होंने कहा ये तब्दीलियां बहुत से नौजवान ऑस्ट्रेलियंस के लिए मौके बराबर करने में मदद देंगी जो हाउसिंग मार्केट से एक ऐसे निज़ाम की वजह से बाहर हैं जो मेहनत से हासिल होने वाली आमदनी पर सरमायाकारी से हासिल होने वाली आमदनी से ज्यादा टैक्स आयद करता है। ग्रीन्स की हिमायत से तब्दीलियों को मंजूर किए जाने का इम्कान है। इधर हामियों का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के रोजगार खिदमात के निज़ाम में तजवीज़ करदा तब्दीलियों से खुश नहीं है जो वर्क प्लेस मिनिस्टर अमेंडा रिश्वत ने तजवीज की थी। बाहिमी जिम्मेदारियों का निजाम शिकायत का शिकार रहा है, जिसमें 2 कॉमनवेल्थ ओब्सवेन की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिनमें पाया गया कि बहुत से लोगों की फलाही अदायगियों की मुअत्तली उनकी मुलाजमत की तकाजे पूरे ना करने पर गैर कानूनी हो सकती है। एंटी पावर्टी सेंटर के तर्जुमान जे कॉनन कहते हैं ये तब्दीलियां महज एक ऐसे निजाम की दोबारा ब्रांडिंग है जो लोगों को रोजगार पर मजबूर करने के लिए बनाया गया, एक ऐसी मईशत में जो कम अज कम 4% रोजगार रखने के लिए डिजाइन की गई है। लेबर सेनेटर डॉक्टर मिशेल एंद्रा राजा कहती हैं ये तब्दीलियां बहुत देर से आना चाहिए, जबकि ग्रीन्स की हुकूमती खिदमात की तर्जुमान पेनी एलमन पेन कहती हैं ये इस्लाहात काफी नहीं हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के नस्ली इम्तियाज के कमिश्नर का कहना है कि वफाकी हुकूमत को कौमी नस्ल परस्ती के खिलाफ फ्रेमवर्क को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए इकदाम करने चाहिए। इंसानी हुकूक कमीशन ने 18 माह कबल मुल्क का पहला कौमी मंसूबा जारी किया था, जिसका मकसद नस्ल परस्ती की तमाम इकसाम के खात्मे के लिए इकदाम करना था। एक दस्तावेज में जिसमें 63 सिफारिशात शामिल हैं जो काम की जगह और मुख्तलिफ शोबों जैसे कानून, तालीम, सेहत, मीडिया और फनून को कवर करती हैं, सेनेट के तखमीने के दौरान खिताब करते हुए कमिश्नर ग्रिधन सेवारामन ने कहा कि वो अभी भी रस्मी जवाब या रद्दअमल के मुतवक्का वक्त के मुंतजर हैं। वो कहते हैं हर किस्म की नस्ल परस्ती को खत्म किया जाना जरूरी है। उधर क्वींसलैंड पुलिस मकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि क्रेंस के
जनूब में एक मुहलिक हमले में मुलविस शार्क की नस्ल की निशानदही की जा सके। क्वींसलैंड पुलिस इंस्पेक्टर एलन बर्न्स का कहना है कि टेलीहेड से कुछ फासले पर एक दुबई रेफ कैनेडियन शॉल में होने वाले वाकये के बाद तफ्तीशकार महकमे माहौलियात और साइंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उन लोगों की तंजीम जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का शिकार हैं ने वफाकी हुकूमत से नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम को ज्यादा काबिल रसाई बनाने की दरख्वास्त की है, खास तौर पर उस हुकूमती ऐलान के बाद कि वो अखराजात बचाने के लिए इस स्कीम को जदीद बनाएंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल माजूरी है जिसमें जिस्म का मुदाफियती निज़ाम दिमाग के खलियात पर हमला करता है। एमएस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से की गई नई तहकीक में पाया गया है कि उसके 900 से ज़ायद जवाब दहंदगान में से सिर्फ 68% को नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम तक रसाई हासिल है, जबकि कुछ स्कीम के मुलाजमीन और जायजाकारों पर इस हालत को दुरुस्त समझने के बजाय गलत फहमी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सामईन आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर 29 मई 2026 का हफ्ता रफ्ता और मैं हूँ वरदा वकार। जी सामईन, तो हफ्ता रफ्ता आपने समाप्त किया और अब यहाँ ये याद दहानी कराते चलें कि SBS उर्दू की बराहे रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक 3 बजे साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। इसके अलावा SBS उर्दू को तलाश कीजिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी मौजूद है SBS उर्दू और यूट्यूब पर भी अब आप SBS उर्दू सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के अवकात में अपनी पसंद के पॉडकास्ट सुनिए। यूट्यूब पर कुछ तवील दौरानी की वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जबकि उन्हीं का छोटा वर्जन आप इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे, जबकि इंस्टाग्राम पर आपको सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू भी मिलेंगे और कुछ इन्फ्लुएंसर्स की बातें भी मिलेंगी। फेसबुक के इन पेज पर जाकर आप हमें पैगामात भेज सकते हैं, हमें ये बता सकते हैं कि आपको नशरियात में क्या कुछ पसंद है और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ऐसी कौन से मौजूआत हैं जिनका SBS उर्दू को अहाता करना चाहिए और ये भी कि कैसी मौसीकी आप नशरियात में सुनना चाहते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं फेसबुक के पेज पर जाके SBS उर्दू के और हमें पैगाम भेज सकते हैं। इसके साथ ही हम नशरियात में शामिल करते हैं पहला गीत, आपको सुनवाते हैं और का फूल।

0: जी सामईन, तो इसके साथ ही शामिल करते हैं नशरियात पे पहला वक्फा। लेकिन जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी खबर आप तक पहुंचेगी, ये तय कौन करता है। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Audio.
7: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
8: लाओ जी आओ दादी,准备好了吗?
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
13: Far from the partisan politics.
7: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट. 100 तो आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए.
9: sbs.com.au/audio.
0: SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में खुश आमदेद, मैं हूँ आपकी मेज़बान वर्दा वक़ार। ये नशरियात का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया की दुनिया की। सामईन, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बदलता एल्गोरिथम आपको क्लिक और स्क्रॉलिंग की एक नई दुनिया में ले जाता है। लेकिन यही सोशल मीडिया सार्फीन में एक ऐसी बेबसी को फ़रोग दे रहा है जिसे सीखा जाता है, यानी सीखी हुई बेबसी। ये कैफियत ना उम्मीदी भी बढ़ा सकती है, लेकिन कौन सी खबरें एल्गोरिथम की बुनियाद पर आप तक पहुंच रही हैं, ये आप खुद तय कर सकते हैं। तफसील सुनिए SBS एग्जामिन्स की इस किस्त में।
14: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
0: सामईन, ऑस्ट्रेलिया में मीडिया की मिल्कियत की तवज्जो को दुनिया की बदतरीन में से करार दिया गया है। और अब जबकि मेटा जैसे टेक जायंट्स हमारे इस्तेमाल की नौइयत की खबरों पर असरअंदाज हो रहे हैं, माहिरीन कहते हैं कि यह हमारे माशरे के तौर पर काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये एक पेचीदा जाल और दर्जा बंदी है, लेकिन ये बड़ा नहीं है क्योंकि सिर्फ चंद बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। बड़ी मीडिया तंजीमें जैसे 9 इंटरटेनमेंट कंपनी, सदर्न क्रॉस ऑस्ट्रेलिया, 7 वेस्ट मीडिया और न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे दी ऑस्ट्रेलियन, दी फाइनेंशियल रिव्यू, स्काई न्यूज, 9 न्यूज, दी सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और दी एज। फहरिस्त जारी है और पिछले तकरीबन 10 साल में बड़ी टेक कंपनियां जैसे मेटा, गूगल और एप्पल भी अहम न्यूज जराए बन चुके हैं। ये देवकामत कंपनियां अपने डिजिटल असासों जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को चलाती हैं जो हमारे और मीडिया कंपनियों के दरमियान मौजूद हैं और दरअसल हमें मौसूल होने वाली मालूमात के दरमियान दरबान बन जाते हैं। SBS एग्जामिन्स की इस किस्त में हम पूछते हैं कि बड़े मीडिया और बड़ी टेक्नोलॉजीज आम ऑस्ट्रेलियन आवाम को मिलने वाली खबरों पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं और ये हमारी दुनिया को देखने के अंदाज पर कैसे असर कर रहा है। जब मीडिया की मलकियत मरकूज होती है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये चंद मुंतखब अफराद को गैर मुनसिफाना ताकत देती है जो फिर हमारी सियासत और अवामी बहस को तशकील दे सकते हैं, कैमरॉन मैकटेरन कहते हैं।
15: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers, the two big television titans, which is 7 West Media and 9 Entertainment Co. And actually surprisingly the ABC is actually a real kind of media giant as well.
0: मैकटेरन एडिलेड यूनिवर्सिटी में मीडिया और कम्युनिकेशन लेक्चरर हैं और 2024 में ग्लोबल मीडिया और इंटरनेट कंसंट्रेशन पर तहकीक करने वाली टीम का हिस्सा थे। रिपोर्ट में पाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में मीडिया की तादाद के लिहाज से ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है।
15: If this was any other sector, if we were talking about, I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated, for the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues.
0: सुर्खियां और खबरें हमेशा इसलिए लिखी जाती हैं कि कहानी को जितना मुमकिन हो दिलचस्प या तवज्जो हासिल करने वाला बनाया जा सके। लेकिन मैकटेरन कहते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल मीडिया ने सुर्खियों और कहानियों को सनसनीखेज बनाने की तरगीब बढ़ा दी है क्लिक्स और इंगेजमेंट के लिए।
15: Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, you know, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but it's just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received.
6: Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on.
0: Dr. Michael Notell, University of Queensland के School of Psychology में Associate Professor हैं। वो कहते हैं जो कुछ हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं, खास तौर पर खबरें, समझी जाने वाली चीजों में से एक, वो एक बुनियादी ख्वाहिश को छूना है जो हमारी कदीम आबाओ अजदाद तक जाती है।
6: You know, our brains are designed to find threats in the environment. And we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us, because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it.
0: वो कहते हैं खबरों और क्लिकबेट मवाद का लामतनाही सिलसिला, चाहे वो सुर्खियां हों या तस्वीर और वीडियोस, दर हकीकत हम में से बहुत से लोगों को सीखी हुई बेबसी का तजर्बा करवा रहा है, जो बिलाखिर हमारे माशरे के तौर पर काम करने के तरीके को मुतासिर करता है।
6: Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about, and that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement. And that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do. And when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary.
0: لہٰذا جب ہم اسکرول کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے اپنی خبریں حاصل کر رہے ہیں تو ہم ان وجوہات کو کیسے زیادہ ذہن نشین کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں آن لائن دکھائی جا رہی ہیں؟
6: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like no, then sometimes I would either teach the algorithm that I don't want to see this stuff. So you can often, like, you know, right click a post and say, I don't want to see more stuff like this. And if there were things that I could do something about, then I would actually try to do that thing. And then, you know, for example, there are times when I have, you know, sent a letter to my local politician saying, like, what's going on about artificial intelligence? What are the risks that you see and what are you going to do about them? And that gave me a sense of control. The other question I would ask myself is, this time spent on this social media app actually serving me? Like, do I want to keep doing this? And often the answer was no. Most of the time, the answer was no.
0: Algorithm aur wo tareeqe jinse hum social media ko mehsoos karte hain मुसलसल बदल रहे हैं। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन तानिया नुटेली कहती हैं, मीडिया लिटरेसी अब कोई ऑप्शन नहीं रही, बल्कि ये एक लाजमी जुज है।
13: So media literacy is about your ability to use, analyze, create and share media and different media technologies.
0: इसमें ये शामिल है कि एल्गोरिथम हमें वो मालूमात दिखाने के लिए कैसे काम करते हैं जिनके साथ हम ज्यादा इंगेजमेंट का इम्कान रखते हैं।
13: The algorithms that run social media platforms, they want us to stay on the platform for longer. And to achieve these, they'll profile us, they'll work out our interests, our anxieties, our biases and beliefs in order to keep feeding us content that's going to keep us engaged for longer.
0: वो कहती हैं जब लोगों को मालूम होता है कि उनकी ऑनलाइन बातचीत से पैसा कैसे कमाया जा रहा है तो वो बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं कि किस पर और कितना एतमाद करना है.
13: Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I seeing this right now? Is this from an account I follow? Is this content an ad? Is it sponsored content? Is it from a trustworthy account? And also making a decision to ignore things that is not what you're looking for to take back some control over your experience.
0: سامعین SBS Examines کی قسط اولیویا دی اوریو نے تیار کی جو SBS اردو کے لیے پیش کی ہے وردہ وقار نے. مزید جاننے کے لیے sbs.com.au/examines پر جائیے.
14: لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تبصرہ کیجیے, فیس بک پر SBS اردو فالو کیجیے.
16: اور اب نشریات میں شامل کرتے ہیں ایک اور گیت. سیب بنگش اور فیصل کباڈیا کا نیا گیت سنواتے ہیں آپ کو, مل ہی لو.

0: जी सामईन, तो इसके साथ ही आपको लिए चलते हैं नशरियात के तीसरे और आखिरी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। लेकिन जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो आपको सुनवाएंगे खेलों के मैदान का अहवाल। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान वरदा वक़ार, जो आपको नशरियात के आखिरी हिस्से में खुश आमदेद कहती है। सामईन, नशरियात के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेलों के मैदान की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए तैयार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वेमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद है। क्रिकेट के अलावा खेलों के मैदान में क्या गहमा गहमी है, सुनिए हाफिज बिलाल की तैयार करदा स्पोर्ट्स रिपोर्ट में।
5: यकीनी बनाइए कि आपको सिर्फ वो खबरें ना मिले जो सोशल मीडिया फीड आप तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि आपको खबरों के हर जाविये का इल्म हो। हमारी तमाम खबरें और कहानियां जानने के लिए आज ही अपने वेब ब्राउजर पर SBS उर्दू की वेबसाइट को बुकमार्क करें sbs.com.au/urdu। आप SBS उर्दू के साथ हैं।
6: SBS उर्दू के लिए मैं हूं हाफिज मोहम्मद बिलाल। आज खेलों की खबरों का आगाज करेंगे कैंगरूज और शहीनों के दरमियान होने वाली वन डे सीरीज से। जी सामिन, कैंगरूज के पाकिस्तान में डेरे। ऑस्ट्रेलवी बैटर मैथ्यू शार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के गर्म मौसम से कोई मसला नहीं। टीम के कई खिलाड़ी हाल ही में समर क्रिकेट खेल चुके हैं। इन्होंने कहा कि स्पिन कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की हालिया कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, स्पिन कंडीशन में बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। चंद सीनियर खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं, नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है, जबकि पाकिस्तान को होम कंडीशन में आसान हरीफ नहीं समझते।
7: Yeah, I mean, I think when we look back at the last sort of T20 series we had here before the World Cup, I think those we could sort of in preparation of the World Cup, what we'd sort of seen in Sri Lanka and and some pretty tough spinning conditions there, so not 100% sure what they're going to produce for us here, but yeah, if it's anything like that, we are prepared. You know, it was a bit of a disappointing 3-game series for us before the World Cup there, but yeah, if we are to face those conditions again, we're ready for them, and we're certainly preparing for them. If you look at our sort of personnel and our change of the squad, I think you know, we've got a really good core group of senior players, but you know, we've got some younger players coming in like Liam Scott and Ollie Peak, so we're really looking at some young faces here as well, you know, with guys to come back from IPL. So you know, as I said, we've got some fresh faces and some senior players as well, so hopefully we can sort of mix them in and around the group and get some solid performances on board. Anytime you play against an opposition, you want to win, and Pakistan have had it over us the last couple of series, so we're certainly in the hunt for a win and a series win. I know there's been a lot of talk around a lot of test cricket coming up for Australia, but you know, we really want to make sure we win these sort of little white ball series here and there. I don't think so. Look, guys have come off an Australian summer. They're pretty fresh from that, so weather can get pretty hot in and around Australia there. So a lot of guys coming from India, from the IPL, which is probably similar conditions, but you know, a nice 4:30 starts here are going to be nice. It's not going to be too warm.
6: अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के 104 मैच कब और कहां कहां होंगे। जी सामने, दुनिया में सबसे मकबूल खेल फुटबॉल का 23वां वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून 2026 से शुरू हो रहा है और ये मुकाबले 29 जुलाई तक जारी रहेंगे। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला मौका है जब तीन ममालिक अमेरिका, मैक्सिको और कैनेडा मिलकर इन मुकाबलों की मेज़बानी कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 104 मैच खेले जाएंगे जो अमेरिका के 11, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में मुनक्किद होंगे, जबकि इफ्तिताही मार्का मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा।
8: लशा है पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम डिफेंडर। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वर्ल्ड कप व्हिच इज हैपनिंग इन अमेरिका, मेक्सिको एंड कनाडा। I'll be supporting Portugal, as you know, my favorite player Ronaldo gonna be playing his last World Cup for Portugal, and yeah, definitely I'll also be going to watch this World Cup, and hopefully Portugal can win this World Cup.
6: अब बात करेंगे, फातिमा सना ने कहा वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है, किसी एक मैच पर नजर नहीं। जी सामिन, कौमी वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा कि आयरलैंड की सह मुल्की सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश हैं, टीम का मोराल बुलंद है, टीम गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार है। फातिमा सना ने कहा कि पावर हिटिंग और प्रेशर में खेलने पर भी काम किया, जबकि पाकिस्तान टीम हर हरीफ के खिलाफ एक ही जारहाना अंदाज अपनाएगी, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों का नहीं सोचना। वाजिया रहे, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा।
9: आई थिंक बिफोर द वर्ल्ड कप इस सीरीज में आना और एक अपॉर्चुनिटी को मिलना, यही सबसे अच्छी बात है टीम के लिए। और वर्ल्ड कप से पहले हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें वर्ल्ड कप के लिए उतना अच्छा है। और सिमिलर कंडीशंस में सबसे बड़े एडवांटेज यही होगा कि इंग्लैंड और आयरलैंड सेम कंडीशंस हैं, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जितना बेस्ट प्रिपेयर कर सकें करें। वर्ल्ड कप से पहले किसी भी टीम के अगेंस्ट आप खेलो और सिमिलर कंडीशंस हो तो बेनिफिट तो होता ही है। और जिस तरह की ये दोनों टीम्स हैं, हमें पता है कि अच्छी टीम्स हैं और अच्छी कंडीशंस हैं। कोशिश यही है कि यूनाइटेड होके खेलें, और जिस तरह पास में खेला है साउथ अफ्रीका की सीरीज, जिम्बाब्वे की सीरीज, तो काफी कुछ उससे सीखा भी है। कहीं कहीं जहां ऑब्वियसली हमारे अच्छा जा रहा था सब कुछ, बैक टू बैक अच्छा चल रहा था, बट ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट की जरूरत हर जगह ही होती है। तो जहां जहां हम लोग लैग कर रहे थे उस पर काम किया। लास्ट 4 डेज का भी हमारा कैंप लगा था लाहौर में, तो वहां पर भी हमने जो लैग करी थी चीजें उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें कि उसको बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर कर सकें। तो आई थिंक यही चांस है जिसमें हर लड़की अपने आप को प्रूव कर सकती है।
6: अब आखिर में बात करेंगे, पाकिस्तानी स्टार पलवश्या बशीर कैनेडियन मास्टर चैंपियन बन गई। जी सामिन, पलवश्या बशीर ने कैनेडियन मास्टर टूर्नामेंट के 35 एज ग्रुप का सिंगल टाइटल पर शानदार कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी स्टार प्लेयर ने फाइनल में कनाडा की टॉप सडीना राइस को शिकस्त देकर बड़ा एजाज अपने नाम किया। तरीकी कामयाबी के बाद पलवश्या बशीर का कहना था कि कैनेडियन मास्टर चैंपियनशिप में दुनिया भर से 300 से जायद प्लेयर्स शरीक थे। इन्होंने कहा कि मास्टर्स कैटेगरी में शिरकत का मतलब ये नहीं कि मेरा ओपन कैटेगरी कैरियर ख़त्म हो गया। SBS से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
10: मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जाहिर सी बात है हर चैम्पियनशिप के लिए जो होता है हम प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे नाम से पहले हमारे मुल्क का भी नाम जुड़ा हुआ होता है। और ये मेरा पहला मास्टर्स कैटेगरी था जिसमें मैं शिरकत कर रही थी और मैंने काफ़ी अपने कोचेस के साथ काफ़ी मेहनत की थी इस टाइटल के लिए. हम लोगों ने यही सोचा था कि हम मैच टू मैच प्ले करेंगे. सारे अपोनेंट्स जो थे बिल्कुल न्यू थे मेरे लिए, तो मैं हर मैच पे फोकस कर रही थी. एंड अल्लाह ताला की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मुझे ये एहसास हासिल हुआ. जी बिल्कुल, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर किसी की ख्वाहिश होती है. अल्लाह का बहुत एहसान है कि मैंने बहुत दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में मैंने, और साउथ एशियन गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है वेमेन सिंगल्स की कैटेगरी में. मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसने वेमेन सिंगल्स की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है. उसके अलावा मैंने टीम इवेंट्स में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हुआ है. मैं युगांडा और कीनिया की सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हो. तो बहुत ज़्यादा उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है. एक रिस्पॉन्सिबल होते हो आप, एक एथलीट होते हो जिसने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करना है तमाम मुल्कों के आगे, अच्छा परफॉर्म करना होता है. तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ कैरी होती हैं.
6: SBS उर्दू के लिए मैं हूँ हाफिज मोहम्मद बिलाल.
5: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए. फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.
0: जी सामईन, तो खेलों के इस खुलासे के बाद आपके लिए ये याद दहानी ज़रूरी है कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे पॉप देसी या साउथ एशियन पर नशर होती है. बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है. अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं. ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए. इसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है. SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में सुनिए. आप SBS उर्दू को पैगाम भेज सकते हैं जिसमें आप हमें ये बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जिनका अहाता SBS उर्दू को करना चाहिए, कौन से मौजूआत और कैसे माहिरीन हैं जिनकी गुफ्तगु आप सुनना चाहते हैं, या अगर आपके अपने अंदर भी कोई ख़ास टैलेंट मौजूद है या आपकी अपनी भी कोई एक ऐसी कहानी है जो आप SBS उर्दू के सामईन से शेयर करना चाहते हैं, तो SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर हमें पैगाम भेजिए. हमें ये भी बताइए कि नशरियात में आप कैसी मौसीकी पसंद करेंगे और आप हमें ये भी बताइए कि कौन से गीतों का आप इंतज़ार कर रहे हैं. SBS के जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस हैं उन पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ ख़बरें सुन सकते हैं बल्कि कुछ मुख्तसर दौरानिए की वीडियोस भी मौजूद हैं. और इसके साथ ही नशरियात का हो रहा है इख्तिताम. हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगली नशरियात में, और जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह. लेकिन जाते जाते हम आपको सुनवाते हैं मन कुंतु मौला.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. शुक्रवार 29 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज आपके लिए कुछ सवाल भी रहेंगे. सवाल एक तो आप जानते ही हैं, हम एक फिल्म के लिए फ्री पासिस दे रहे हैं तो उससे संबंधित सवाल मैं आगे पूछूंगी. लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इसको सुनिए और पहचानिए कि इसमें कौन कौन से साज शामिल हैं. तो आपने इन साजों को पहचानने की कोशिश की होगी. इसमें तीन साज एक साथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइएगा कि ये कौन से साज हैं. और आपको बताती चलूँ कि कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रोजगार सेवाओं में नए सुधारों की. मेलबर्न में विम्टम सिटी काउंसिल में एक प्रदर्शनी है, उसके बारे में आपको आपको उसकी जानकारी देंगे. और हम बात करेंगे कुछ भूली दास्तान की. जी हाँ, ये है स्लैम पोएट्री और रिसाइटेशन कला को जो एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसका एक अंश आप सुन सकेंगे कि किस तरह से कलाओं को एक आधुनिक आवाज़ मिल रही है. शायरी, गज़ल, संगीत और कहानी, ये सब का मिश्रण. तो ये सब चीजें आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे. लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 29 मई के लिए यह न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच डील में तरक्की हो रही है और इससे सीज फायर बढ़ सकता है. साथ ही ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का रास्ता बना सकता है. कहा जा रहा है कि प्रस्तावित एग्रीमेंट सीज फायर को 60 दिनों के लिए बढ़ा देगा. हालांकि इसके लिए अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की लीडरशिप दोनों की मंजूरी चाहिए. वेंस का कहना है कि बातचीत करने वाले अभी भी कई रुके हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं लेकिन उनका मानना है कि दोनों पक्ष एक एग्रीमेंट के करीब हैं. ईरान का कहना है कि उसकी रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने बिना इजाजत के हॉर्मस स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे चार जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं. सरकारी मीडिया की रिपोर्ट है कि जहाजों को ईरानी सेना ने चेतावनी दी थी और बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया. ये घटना तेहरान द्वारा इस अहम जनमार्ग से शिपिंग की निगरानी के लिए एक नई संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पहुंचे हैं. कांगो इबोला के बड़े आउटब्रेक से जूझ रहा है. टेड्रोस एडनॉम ग्रेब्रेस का कहना है कि

0: देश के पूर्वी हिस्से में लड़ाई, जगह बदलने और खाने की कमी की वजह से मुश्किलें हो रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इबोला के संदिग्ध मामले करीब 1000 हो गए हैं और कम से कम 220 मौतें होने का शक है। ब्रिस्बेन के विक्टोरिया पार्क में कम से कम 40 पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये ओलंपिक स्टेडियम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट नेशंस के प्रदर्शनकारियों ने उस जगह पर एक एबोरिजिनल टेंट एम्बेसी बनाई है। उनका कहना है कि इस डेवलपमेंट से सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन नष्ट हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे इस प्रोजेक्ट का विरोध करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की पीक फार्मिंग बॉडी फेडरल सरकार से कैपिटल गेन टैक्स में छूट की सीमा को अपडेट करने की मांग कर रही है और चेतावनी दे रही है कि फैमिली फार्मर्स अनजाने में बड़े टैक्स सुधारों में फंस सकते हैं। नेशनल फार्मर्स फेडरेशन का कहना है कि जमीन की कीमतों और खेती की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी के बावजूद 2007 से एलिजिबिलिटी सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेलबर्न की एक महिला जिस पर सीरिया जाने के बाद आईएस में शामिल होने का आरोप है, वो मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुई है और जमानत की मांग कर रही है ताकि वो अपने 4 बच्चों की देखभाल कर सके। 34 साल की इस महिला पर घोषित संघर्ष वाले इलाके में घुसने और एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने का आरोप है। इन अपराधों में अधिक से अधिक 10 साल जेल की सजा हो सकती है। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश में शामली से गोरखपुर तक प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में से एक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर 750 किलोमीटर लंबा है। इससे निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है ये कि प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा हो सकता है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया में रोजगार सेवाओं में नए सुधारों की बात, यानी ये ऐलान किया गया है। सरकार इसे बड़ा बदलाव बता रही है, लेकिन आलोचक ऐसा नहीं मान रहे। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में और इन पर सामने आई अलग अलग राय के बारे में नबील हसन की इस रिपोर्ट में।
1: सरकार ने रोजगार सेवाओं में पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा सुधार बताई जा रही नई योजना का ऐलान किया है। यह व्यवस्था बेरोजगार ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए बनाई गई है, लेकिन म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस और प्राइवेट प्रोवाइडर्स जारी रहने के कारण समर्थकों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ नाम बदलने जैसा है। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। वर्कप्लेस मिनिस्टर अमांडा रिश्वर्थ के लिए यह पिछले 3 दशकों में ऑस्ट्रेलिया की रोजगार सेवाओं में किया गया सबसे बड़ा बदलाव है।
2: At an individual level, the system has one objective, to place people in a suitable, meaningful job. But it must do more than just job matching. A well-functioning employment service system must also be able to provide the right assistance to job seekers at the right time.
1: मौजूदा प्रणाली के तहत नौकरी की तलाश कर रहे 10 लाख से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों को एक साल में $2 अरब की योजना के अंतर्गत रोजगार सेवाओं में जुड़ना अनिवार्य है। ये सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना हुई है। इसे अन्यायपूर्ण और दंडात्मक बताया गया है। इसमें अक्सर सरकारी सहायता को अनुचित तरीके से रोकने की शिकायतें आती रही हैं। साथ ही इसे मुनाफे पर चलने वाली प्रणाली भी कहा गया है। कॉमनवेल्थ ओम्बड्समैन की 2 रिपोर्टों में पाया गया है कि नौकरी खोजने की शर्तें पूरी न करने पर कई लोगों की सरकारी सहायता रोकना शायद गैर कानूनी हो सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने जो बदलाव घोषित किए हैं वो इस बात को स्वीकार करने का नतीजा है कि मौजूदा प्रणाली पूरी तरह सही नहीं है।
2: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1 million Australians who access this service each year. These concerns were echoed in the final report by the House Select Committee on Workforce Australia Employment Services in 2023. Found that a one-size-fits-all approach across all elements of Workforce Australia is letting too many participants fall through the cracks and creating inefficiencies in the system.
1: इन बदलावों के तहत एक नया तीन स्तरीय यानी थ्री टीयर सिस्टम लागू किया जाएगा। ये लोगों के नए आकलन के आधार पर तय होगा, जिसमें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और नौकरी पाने से उनकी दूरी को देखा जाएगा। स्ट्रीम वन यानी पहले स्तर के तहत उन लोगों के लिए एक डिजिटल सेवा दी जाएगी जो तकनीक का इस्तेमाल जानते हैं और नौकरी
2: will be truly effective and an efficient way to support participants who require less intensive supports.
1: Stream 2 yani dusre star ka uddeshy nayi cheeze seekhne mein madad karna aur kaam par lautne ke liye aatmavishwas badhana hoga.
2: Supports under this service stream will focus on what we know works to get people into jobs, like active job coaching, work ready supports and training linked to in demand jobs. But these supports will also need to work for the participant by being clearly connected to their employment goals and to the jobs available in where they live.
1: Stream 3 yani teesra star un logon ke liye banaya gaya hai jinki samasyaen adhik jatil hain aur jinhe zyada sahayata ki zarurat hai.
2: We know many people in this service stream won't have a linear path into work. So this service stream will provide more time, more flexibility and more support to build the confidence and capability.
1: सरकारी सेवाओं के लिए ग्रीन्स की प्रवक्ता पेनी ऑलमैन पेन का कहना है कि ये सुधार बेरोजगार लोगों की मदद नहीं करेंगे.
3: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent watchdog overseeing it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people. If this government is not prepared to bring job services back into public hands and to abolish the punitive coercive mutual obligations framework, then frankly these reforms aren't worth the paper that they're written on.
1: नए घोषित हुए सिस्टम के सबसे विवादित पहलुओं में से एक ये है कि म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस अभी भी इसका हिस्सा बने रहेंगे। इस व्यवस्था के तहत सरकारी सहायता पाने वाले नौकरी तलाशने वालों को भुगतान जारी रखने के लिए कुछ तय काम पूरे करने होते हैं।
2: The type of mutual obligations will differ depending on how far someone is from the labour market. So if you are close to the labour market, then putting in job applications in jobs that you're interested in and that are in your goal plan are clearly an appropriate activity. If you are very far from the labour market and do not have work-ready skills, there is no point in that participant putting in endless applications before they have got those work-ready
1: लेकिन एंटी पॉवर्टी सेंटर के प्रवक्ता जे कूनन के अनुसार ये सिस्टम लोगों को नौकरी के लिए मजबूर करने के लिए बनाया गया है। अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें कम से कम 4% लोग बेरोजगार हैं। उनका कहना है कि सरकार को व्यक्तिगत समस्याओं के बजाय प्रणालीगत बाधाएं यानी स्ट्रक्चरल बैरियर्स पर ध्यान देना चाहिए।
4: What we need to see is, you know, to renationalize these services. Of course, there were issues with the Commonwealth Employment Service, but, you know, what is happening now is we're essentially seeing billions of dollars in money going overseas through hedge funds and investment firms that these providers are attached to. So what we're seeing is money being taken from people or money that should be spent on helping people and it's being sent away or going to these companies' profits. A far better way to do it would be to for the government to run these services to make sure that those finances were being used appropriately and accordingly to help people when they need it.
1: जे कूनन का कहना है कि ये बदलाव कुछ खास नहीं है और ये ऐसा है जैसे कि सिर्फ नाम बदला गया है।
4: I mean, they had a three-tiered system under the job active system. Instead of stream 1, 2 and 3, they had stream A, B and C. So we're not really seeing a fundamental shift in the way that services are being delivered for people who are, you know, forced into these coercive systems.
1: SBS News के सिडनी लैंग की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
0: तो तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में रोजगार सेवाओं में जो नए सुधारों का ऐलान किया गया है और सरकार जो इसे बदलाव बता रही है उसके क्या बदलाव हैं और क्या लोगों की अलग अलग राय है इसके बारे में। कार्यक्रम में आगे हम मेलबर्न में भारतीय मूल की प्रथम राष्ट्र महिला कलाकार और उसकी प्रदर्शनी के बारे में बात करेंगे, साथ ही एक शो की बात करेंगे, वो भूली दास्तान, और भारत से रिपोर्ट तो होगी ही। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जरा आप इस झलक को सुनिए और बताइए कि इसमें कौन से साज यानी इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें और अपने जवाब लिख भेजिए 04397997667 पर। और हाँ, फिल्म पासिस की बात भी है जिसकी जानकारी आगे देती हूँ, लेकिन अभी पहले एक अंतराल।
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News. And I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
11: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज भी हम आपको दे रहे हैं फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, इस फिल्म के पासेस जीतने का अवसर। आपने हमें बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं, 04397997667 पर। और अब भारत से हमारे संवाददाता विश्वरत्न के साथ ये रिपोर्ट।
12: घुसपैठियों से निपटने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने रुख पर कायम है। राज्य और केंद्र की सरकार इस मुद्दे से निपटने में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
13: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
12: पश्चिम बंगाल सरकार ने 600 हेक्टेयर जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 121 हेक्टेयर जमीन भी भारत सरकार को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए अमित शाह कहते हैं,
13: हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की दुर्धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टर भूमि भारत सरकार को दे दी।
12: और अब चर्चा सीबीएसई के ओएसएम विवाद की। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। गुरुवार को सीबीएसई के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बैठक की। ओएसएम तकनीक का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायत को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सीबीएसई के परिणाम के दौरान हुई कुछ गड़बड़ियों को उन्होंने स्वीकार भी किया।
14: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनके मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
12: विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पहले नीट पेपर लीक, इसके बाद सीबीएसई विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर काफी मुखर हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप शिक्षा मंत्री पर लगाते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा है। राहुल गांधी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं,
14: राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूँ और उनको अनुरोध करता हूँ, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है ना बढ़े, हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में ये हम सबको अपील करते हैं।
12: इस बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पेपर लीक के कारण रद्द हुई नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को होनी है। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा सकती है। और अब चर्चा कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सिद्धारमैया ने मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। बाद में वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल थावरचंद गहलोत उस समय बेंगलुरु में नहीं थे। हालांकि आज उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि वह सरकार से जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे।
15: I will continue in active politics.
12: सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे इसका अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि नया मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा के अनुसार ही बनेगा।
15: Whatever lesser party takes a decision, Congress lesser party takes a decision, and High Command takes a decision, he will be the chief minister of this state.
12: बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसके अलावा नई सरकार के गठन को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक गतिविधियां तेज हो गई हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इसी बैठक में नए सरकार की दशा और दिशा तय हो जाएगी। और अंत में चर्चा मौसम की। भीषण गर्मी से परेशान उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में आज बारिश राहत लेकर आ सकती है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम सिस्टम के कारण यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब सहित 15 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय से गर्मी का कहर झेल रहे लोगों के लिए बारिश राहत भरी हो सकती है, लेकिन आंधी तूफान के कारण मुश्किलें भी सामने आ सकती हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: तो श्रोताओं, भारत की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। हमारी श्रोता रीत दुआ ने इंस्ट्रूमेंट्स को पहचान कर अपना जवाब लिख भेजा है। आप भी पहचानिए। इसके लिए इस झलक को एक बार दोबारा आपके लिए सुनवा रही हूँ। तो पहचानिए और जवाब लिख भेजिए 0439-799-767 पर। और मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: SBS South Asian.

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS स्पोर्ट खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
4: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता वरार। श्रोताओं, फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, इसके डबल पासेस जीतने के लिए आपने हमें बताना है इस फिल्म के निर्देशक का नाम, अपने नाम और ईमेल के साथ में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक गाने के साथ। इस गाने के साथ ही आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी फिल्म का है, और अगर फिल्म नहीं जानते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसके संगीतकार कौन हैं? लिख भेजिएगा आप इसके बारे में भी।

0: जी, तो आप ये गाना सुन रहे थे, क्या आपने पहचाना कि ये कौन सी फिल्म का है और इसके संगीतकार कौन है? लिख भेजिएगा। और इस बीच में हमारे श्रोता पीयूष जी ने भी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हैं, आप भी पहचानिएगा। अभी एक बार उसको फिर से सुनवा दूंगी उसकी झलक, लेकिन पहले बात करते हैं कि मेलबर्न के विंडम सिटी काउंसिल ने भारतीय मूल की प्रथम राष्ट्र की महिला कलाकार हेली मिलर बेकर के आर्ट वर्क की प्रदर्शनी लगाई है और इसके साथ में हिंदी टूर भी आयोजित किए गए हैं। तो क्या है ये और हेली भारत से कैसे जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं इस बातचीत में। और हमारी सहयोगी वृषाली जैन ने ये बातचीत की है जसप्रीत शाही से, जिन्होंने इसकी हिंदी टूर को ऑर्गेनाइज किया है। तो सुनते हैं ये बातचीत।
1: दोस्तों, आज हम एक बड़ी ही अलग किस्म की चर्चा कर रहे हैं भाई। विंडम आर्ट गैलरी जो कि मेलबर्न में है, वहां पर हेली मिलर बेकर सिलेक्टेड वर्क्स नाम की एक एग्जीबिशन जारी है, जहां पर हेली मिलर की आर्ट वर्क्स हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। वे एक इंडिजिनस आर्टिस्ट हैं। क्या कुछ प्रदर्शित है, कैसे कुछ प्रदर्शित है, उस पर चर्चा करेंगे जसमीत कौर साही के साथ, जो कि इस पूरी एग्जीबिशन के हिंदी टूर करवा रही हैं। तो जसमीत, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी में स्वागत है।
2: थैंक यू, शुक्रिया आपका वृषाली।
1: आपसे ही जानेंगे जसमीत की सिलेक्टेड वर्क्स बाय हेली मिलर बेकर क्या है, क्यों ये एग्जीबिशन जरूरी है और हम किस लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं।
2: जी देखिए, जैसे कि आपने कहा, हेली मिलर बेकर जो हैं वो एक इंडिजिनस कलाकार हैं। वो एक गुंडिचमारा, जबवरंग और एंग्लो इंडियन आर्टिस्ट हैं, वेरबी में रहती हैं। उनके करियर के 10 साल पूरे होने पर ये एक प्रदर्शनी उन्होंने विंडम आर्ट गैलरी ने रखी है। वो वेरबी में ही पली बड़ी हैं, वहीं पे स्कूल गई हैं।
1: तो इस एग्जीबिशन के हिंदी टूर करने का कहां से एक ये पूरा आइडिया आया और क्यों ये हिंदी टूर जरूरी है जसमीत?
2: देखिए, जो गैलरी है, गैलरी की जो क्यूरेटर हैं उनका नाम है ओलिविया पलोनी। उन्होंने मुझसे ईमेल पे ये बात कही। उनके आर्ट टीम में एक बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर हैं, इप्सिता कॉलिंस, उन्होंने नाम सजेस्ट किया। हेली हैं, उनका जो हेरिटेज है, बैकग्राउंड है, उनका एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड है। उनके जो ग्रैंडफादर हैं 1950s में यहाँ आए, उनकी जो मिक्स्ड हेरिटेज है उसकी वजह से उनकी ये इच्छा थी कि हिंदी में एक टूर आयोजित हो जाए इस एग्जीबिशन में। हेली के जो पति हैं वो भी एंग्लो इंडियन है, उनकी फैमिली मेरे ख्याल अलाहाबाद से है, तो वो चाहती थी कि उनका जो पूरा काम है वो एक टूर हिंदी में रहे। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सिटी ऑफ विंडम जिसे कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा विक्टोरिया में भारतीय लोग रहते हैं और वो एक ऐसी LGA है जहाँ पे बहुत ही तेजी से एबोरिजिनल और टोरेस्ट स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की आबादी भी बढ़ रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग लोकेशन है जहाँ पर मेरा मानना है कि ऐसी प्रदर्शनी इन सब समुदायों को करीब ला सकती है।
1: तो आपने इस टूर को करने की हामी क्यों भरी?
2: देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है वो राइटिंग एडिटिंग में है। मैं ऑस्ट्रेलिया आई 14 साल पहले यही पढ़ने, हालांकि मैं ये इंग्लिश में करती हूँ। भारत में पली बड़ी हूँ तो मैं हिंदी भाषा से काफी वाकिफ हूँ, ऑल्दो मदर टंग पंजाबी है, पर क्योंकि मैं हिंदी बोल सकती हूँ और मुझे इंटरेस्ट है, मैंने काफी ट्रांसलेशन का काम किया है। एक्चुअली अंकल ब्रूस पास्को हैं जो सीनियर एबोरिजिनल आर्टिस्ट हैं, उनकी भी एक कविता मैंने ट्रांसलेट की है, तो मुझे इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि जब हम हिंदी में ये चीजें पढ़ते हैं, इनको अब्सॉर्ब करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। फर्स्ट नेशंस आर्टिस्ट के एग्जीबिशन को हिंदी में टूर किया जाए ऐसा मैंने नहीं सुना, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही बढ़िया एक मौका है और क्यों नहीं कोशिश की जाए, एक कोशिश ही कर सकते हैं। नहीं
1: जी, और जसमीत, थोड़ी बात करते हैं हेली के काम के ऊपर। तो उनकी जो फर्स्ट नेशंस हेरिटेज है, एंग्लो इंडियन हेरिटेज है, वो उनके काम को किस तरह से एक आकार देती है, इस पर बात करते हैं। क्या है इस एग्जीबिशन में ऐसा खास जो इन दोनों तरीके की हेरिटेजेस को भी रिफ्लेक्ट करता है, झलकाता है, प्रदर्शित करता है?
2: देखिए, अक्सर काफी मुश्किल होता है कि एक आर्टिस्ट की जो उनकी हेरिटेज है उसमें कहा जा सके एग्जैक्टली कहाँ पर वो इन्फ्लुएंस है। उनका काम ज्यादातर कोलाज, फिल्म और फोटोग्राफी के आसपास है। मेरे ख्याल पेंटिंग से स्टार्ट किया था। कोलाज, फिल्म और फोटोग्राफी में आप इस एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं उनके 6 सीरीज ऑफ वर्क्स हैं, जो अबरिजिनल और टोरेस्ट स्ट्रेट आइलैंडर महिलाओं की जो शक्ति है और उनका जो बल है उसके ऊपर ये एग्जीबिशन केंद्रित है। एक मल्टी जनरेशनल लेंस की तरीके से वो अपने पर्सनल और पॉलिटिकल जो उनकी जिंदगी है उसका एक मेल जो होता है उसका एक दृष्टिकोण उन्होंने दिखाया है।
1: इसको आपको हिंदी में ढालने में कितना मुश्किल हुई और किस तरीके से आपने ये सुनिश्चित किया कि जो इसकी कल्चरल सेंसिटिविटी है वो भी बनी रहे और हिंदी के जो श्रोता हैं उनके लिए भी एक नई जानकारी रहे? और अगर मैं कहूँ कि आपके लिए क्या नई जानकारी निकल के आई इस पूरे एक्सरसाइज से, तो वो क्या रहेगी?
2: देखिए, मैं तो कहूंगी पिछले 2 हफ्तों में मैंने तो नए ब्रेन सेल्स उगा लिए। बिल्कुल इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ मेरा सोचने का और ये चीजें सुनिश्चित करने का कि किस तरीके से हम एक कल्चरली सेंसिटिव तरीके से ये कहानियां जो हैं, जो हेली बता रही हैं अपने काम काम के द्वारा, हम हिंदी में मैं इनको ढाल सकूं। एक एहसास ही है जो हम श्रोताओं को या दर्शकों को दिखा सकते हैं। जो ये कहानियां हैं हम सबके लिए अननोन तो है नहीं। इस देश का जो इतिहास है हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। हम खुद भारतीय जो लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम ब्रिटिश राज के बारे में भी काफी वाकिफ हैं। ऑल्दो कहना पड़ेगा कि जो उसका प्रभाव है वो बहुत ही अलग है। हम अभी भी अपनी संस्कृति, अपने सभ्याचार, अपनी चीजों को बनाए हुए हैं, वैसा यहाँ पूरे तरीके से तो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही जरूरी है कि ये कहानियां हम अनेक अनेक भाषाओं में सुने, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया एक जिसे कहते हैं मल्टीकल्चरल कंट्री है।
1: जी, तो इस पूरे टूर को लीड करने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या रहा है? और अगर आप कोई उदाहरण हमें दे सके कि हेली के किस काम में आपको क्या लगा, जैसे हमने कई सारी चर्चा की इतिहास की बात की, लेकिन अगर हम इसे एक उदाहरण से समझ सके कि किस तरीके से हेली का कोई एक काम रहा हो, क्योंकि बात जरा साफ होगी फिर।
2: देखिए, एक उनकी बहुत बढ़िया एक फिल्म है जिसका नाम है द अम्ब्रा। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में है, एक एबोरिजिनल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात होती है इस फिल्म में। बहुत ही सटल फिल्म है, हॉरर मिस्टीरियस सी कुछ चीज है इस फिल्म में। उसको हिंदी में कैसे बताया जाए, इसलिए मैं मेरा सबसे पहला अप्रोच रहा है इस पूरे टूर को बनाने के लिए कि एक एहसास बहुत जरूरी है। मेरी जब बातचीत भी हुई थी हेली के साथ, जब मैं ये तैयारी कर रही थी इस टूर के बारे में, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप क्या चाहती हैं, सबसे क्या महसूस करें। उनका यही कहना है कि मैं चाहती हूँ मीट मी हाफ वे। मैं उनको उनकी भाषा में ये कहानियां सुनाना चाह रही हूँ और लोग वो महसूस कर सकें। तो अब मेरे लिए एक वो फिल्म के बारे में बोलना काफी एक अच्छा चैलेंज रहा। और दूसरा था कि जो कि एक पर्सनल चैलेंज है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंट्री होती है जो कि हम स्टार्ट में बोलते हैं, उसको हिंदी में लिखना, उस चीज में मैं काफी टाइम लगा क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एकदम सही हो। तो ये दो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही मैं कहूंगी बढ़िया चैलेंजेस रहे।
0: हेली मिलर बेकर सेलेक्टेड वर्क्स विंडम आर्ट गैलरी वेरीबी में अभी प्रदर्शित है। 13 जून 2026 को इसका दूसरा और आखिरी हिंदी टूर किया जाएगा। मई महीने की शुरुआत में इसका पहला हिंदी टूर हो चुका है। जसमीत साई के साथ हुई यह बातचीत रिकंसिलिएशन वीक के दौरान आपके लिए लेकर किया SBS हिंदी से वैशाली जैन।
3: तो श्रोताओं, आप ये जानकारी ले रहे थे कि प्रथम राष्ट्र महिला कलाकार हेली मिलर बेकर की आर्ट वर्क की जो प्रदर्शनी लगी और वो कैसे भारत से संबंधित हैं उसके बारे में आपने जाना। और आपसे मैं ये भी पूछ रही हूँ कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो सोचा एक इसकी झलक एक बार और सुनवा देती हूँ। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप उनको पहचानिए और हमें अपना जवाब लिख भेजिए। मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। विक्रम बड़वार जी ने भी अपना उत्तर लिख भेजा है कि वो कौन से साज हैं, और वैसे वो कौन से साज हैं उनके बारे में मैं आगे कार्यक्रम में बताऊंगी। और श्रोताओं बताती चलूं कि आप अपने संदेश भेजते रहें कि फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, इसके निर्देशक कौन है, अपने नाम और ईमेल के साथ, ताकि आप भी उस ड्रॉ में शामिल हो सकें। और इसके अलावा अभी हम आगे बात करते हैं। एक शो जो आने वाला है वो भूली दास्तान, लेकिन उस दास्तान से पहले एक गाना सुनते चलें।

0: और आइए श्रोताओं, अब बात करते हैं एक शो वो भूली दास्तान, जहां है संगीत और कहानी कथन भूली बिसरी कहानियों को फिर से जीवन देने की बात, यानी स्लैम पोएट्री। इस अंश को प्रस्तुत कर रही हैं भव्या पांडे।
1: दोस्तों, कहते हैं जुबानें अलग हो सकती हैं, लेकिन जज्बात हमेशा एक जैसे होते हैं। नमस्कार, आदाब, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ, और आज का ये खास अंश अल्फाज का नहीं एहसास का है, जहाँ कहानियाँ दिलों से निकलकर दिलों तक जाएंगी, जहाँ नज़में सरहदें नहीं देखेंगी और जहाँ हर आवाज एक नए रिश्ते को जन्म देगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे उर्दू की नज़ाकत और हिंदी की मिठास मेलबर्न की मल्टीकल्चरल रूह को एक ही मंच पर साथ ला रही है। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जो हमसे करेंगे कला, स्टोरी टेलिंग, AI के जमाने में ओरिजिनलिटी और कई सारे मुद्दों पर खास बातचीत।
2: मेरा नाम सिद्रा है, मैं कुछ लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ और कुछ सुनाती हूँ कहानियाँ।
3: हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैंने और सिद्रा ने साथ में तकरीबन एक साल पहले उड़ान नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, जो इस तरह के शोज करती है, जो हमारे आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं।
1: जी, बातचीत को आगे ले जाने से पहले मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अपना कुछ लिखा हुआ उन्हें सुना दें।
3: एक मेज पर एक चाय और अखबार छोड़कर, और पास ही में अपना पिंदार छोड़कर, पिंदार प्राइड को कहते हैं। एक मेज पर एक चाय और अखबार छोड़कर, और पास ही में अपना पिंदार छोड़कर, नाकाम कहानी के किरदार छोड़कर, इस पार की हर बेबसी उस पार छोड़कर, फिर लौट के जाने के आसार छोड़कर, मैं घर से चल पड़ा हूँ घर बार छोड़कर। कोई फूल जैसे तेरे रुखसार छोड़कर, जुल्फों में खनखनाते मल्हार छोड़कर, इस दिल की बढ़ती हुई रफ्तार छोड़कर, हल्की सी मुस्कुराहट का भार छोड़कर, तुम भी गए हो मुझको कई बार छोड़कर, मायूस दिल शिकस्ता तलबगार छोड़कर, हर जीत छोड़कर हर एक हार छोड़कर, तनका लिबास पांव की पैजार छोड़कर, सब दोस्त यार सारे गम खुआर छोड़कर, मिलता था जिनसे रोज मैं इतवार छोड़कर, वो किताबों में लिखे अशार छोड़कर, मेरे जॉन मीर गालिब गुलजार छोड़कर, अब आ गया हूँ बीच में गुफ्तार छोड़कर, रुकने की सारी कोशिशें बेकार छोड़कर, घर गांव खेत फसलें त्योहार छोड़कर, दो चार यादें लेकर दो चार छोड़कर, तुमको भी है सुकून ये तकरार छोड़कर, मुझको भी क्या कमी है एक प्यार छोड़कर।
1: क्या, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जहां हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, कला, इतिहास और आर्ट को जिंदा रखना कितना महत्वपूर्ण है।
3: एक्चुअली मुझे ये इसका रीजन नहीं पता है कि AI को शायद आर्काइव्स पुराने पोएट्स के मिल नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में सबसे ज्यादा टाइम है भी AI को कुछ करने में, वो शायद आर्ट की फील्ड ही है। क्योंकि आप अगर आप AI से बोल के कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि अभी अभी दिल्ली दूर है इसके लिए। तो और आर्टिस्ट के यूनिक पर्सपेक्टिव्स मुझे नहीं लगता अभी तक AI ने कैप्चर किया है। हालांकि AI को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई किसी आर्टिस्ट के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है और वो उस कॉन्सेप्ट को बता के AI से बोलते हैं कि मुझे इसके ऊपर एक प्ले लिख के दे दीजिए, इसके ऊपर एक स्टोरी लिख के दे दीजिए, पोएम लिख के दे दीजिए, तो आपको एक स्टार्टिंग ग्राउंड मिल जाता है, आप उससे बिल्डअप कर सकते हैं। पर जितना ओरिजिनल आपका कॉन्सेप्ट है, उतना ओरिजिनल आपकी राइटिंग भी होनी चाहिए, तो उसके बाद आपको काफ़ी एफर्ट डाल के उसको अपने अपने स्टाइल में बनाना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि लोग अभी भी ओरिजिनल क्रिएटिविटी देखने आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ AI जनरेटेड कॉन्टेंट हम आर्टिस्ट लोग अगर लोगों के सामने लाएंगे, तो बहुत जल्दी उसका चार्म खत्म हो जाएगा।
2: इसके ऊपर मैं कुछ ऐड करूंगी कि जैसे आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए AI बहुत यूज हो रहा है, तो आप फौरन से पहचान सकते हैं कि कौन सी इमेज ओरिजिनली क्रिएट की गई है और कौन सी इमेज AI से जनरेटेड है। एंड इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग टू सी कि एक ही जैसे हर चीज, कोई ब्रांड अवेयरनेस नहीं रह गई, कोई रियलिटी आपको पता ही नहीं लगती कि उस ब्रांड की क्या कहते हैं उसको, जो कोर आइडेंटिटी है वो आप समझ ही नहीं पाते। तो आई डोंट थिंक के लोगों को वो चीज पसंद आती है। और वो पकड़ी भी जाती है फौरन।
1: आपके आने वाले कार्यक्रम में हमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का एक सम्मिश्रण देखने को मिलेगा, तो जानना चाहूंगी कि क्या इन दोनों भाषाओं को आगे लेकर चलना ये क्या कोई इंटेंशनल प्रयास था?
2: हाँ जी बिल्कुल, लाहौर वालों को दिल्ली बहुत पसंद है और दिल्ली वालों को लाहौर, तो हमने कहा ये चीज बाहर भी लेके आते हैं। क्यों दिल्ली वाले?
3: जी इसमें आर्टिस्ट को भी थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, जैसे कुछ लोगों को थोड़ी उर्दू आती है, कुछ लोगों को ज्यादा उर्दू आती है, कुछ उर्दू बोलने वालों को थोड़ी कम हिंदी आती है। मुझे लगता है समझने वालों को सब कुछ समझ में आ जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है। इनफैक्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर ना है, बट अगर थोड़ी बहुत पंजाबी कोई बोल रहा है उस शो में, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं है और कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है। अगर आप उनसे वो छीन लेंगे, आप मुझे बोलेंगे सिर्फ उर्दू में लिखें, तो कैसे हो पाएगा? वो तो इट विल नॉट बी नेचुरल टू मी। तो इस तरह से थोड़ा सा आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी और थोड़ा ऑडियंस की समझ को ध्यान में रखते हुए उनको भी तकलीफ ना हो, इस तरह से हम शो बनाने की कोशिश करते हैं कि सबको सबको इंटरेस्ट आए।
2: उर्दू तो वैसे ही बहुत सारी जबानों का मिलन है और उसमें हिंदी भी इंटीग्रेटेड है, उसमें उर्दू पर्शियन भी इंटीग्रेटेड है, पंजाबी के भी लफ्ज हैं, अब हमने इंग्लिश भी ले लिया बीच में, थोड़े देर से बाद हम फ्रेंच भी लेने वाले हैं। तो वो आई थिंक के उर्दू की खूबसूरती तभी बाहर निकलती है जब उसमें बहुत सारी जबानें जब मिल जाती हैं और रस मिला देती हैं अपना, तो देन वो ही बाहर आता है। ये यस इट इज इंटेंशनल एंड आई थिंक के हम ये दोनों जबानें बहुत जुड़ी हुई हैं, तो इसको ऐसे जुड़े रख के ही आगे लेके चलेंगे तो ही मजा आएगा।
1: जानना चाहूंगी कि लिखने की कला पर ज्यादा जोर देना चाहिए या पढ़ने यानी रेसिटेशन की कला पर, क्योंकि वो भी आपके शो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
3: आपकी आर्ट का एक्सप्रेशन जिस तरह का है, जो अभिव्यक्ति है, उस पर निर्भर करेगा। जैसे अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं जो सिर्फ प्रिंट मीडिया में जाने वाला है, आप अखबार में कुछ छाप रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं, तो लेखन शैली से ज्यादा फर्क पड़ेगा। पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो द होल थिंग बिकम्स वन सिंगल एक्ट। तो आपकी रीडिंग, परफॉर्मेंस, अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस, स्टेज सेटिंग, एवरीथिंग, हर चीज उसका एक हर चीज के समागम से वो पूरा एक्ट निकल के आएगा। तो उसमें आप किसी एक चीज को कम या एक को ज्यादा नहीं आंक सकते। जैसे हमारे शो में अगर हम लोग संगीत और लेखनी और एक्टिंग और पढ़ने को सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट करके लाएंगे, तो वो सब कुछ एक साथ ही उसमें से कोई भी एलिमेंट निकाल देंगे तो वो ओरिजिनल जो एक्ट था वो रह नहीं जाएगा।
1: कम्युनिटी का कितना बड़ा हाथ होता है ऐसी कलाओं को आगे ले जाने में, ऐसे लोगों को वो स्टेज देने में जहाँ पर वो अपनी कलाओं को प्रस्तुत कर सकें। साथ ही आपकी पहल में ऐसा क्या खास है?
3: मैंने और सिद्रा ने साथ में तकरीबन एक साल पहले उड़ान नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, जो इस तरह के शोज करती है जो हमारे आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं।
2: वो भूली दास्तां
3: हमारा ये चौथा शो है। मेलबर्न की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे पहले तीन शोज को इतना बड़ा सक्सेस बनाया। ये पहली बार हम एक स्टोरी टेलिंग शो कर रहे हैं जिसमें अलग अलग लोगों की अपनी लिखी हुई या किसी फेमस इंसान की लिखी हुई पढ़ सकते हैं, जैसा उनको अच्छा लगे। और इसमें यूनिकली हम लोग म्यूजिक इंटीग्रेट कर रहे हैं उन स्टोरीज के साथ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बड़े मन से हमने लिखा है, बड़े मन से इसकी तैयारियां चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसमें आकर शरीक होंगे और इसको भी उतनी बड़ी सक्सेस बनाएंगे जितनी बाकी शोज को बनाया। 31st मई को संडे को, और प्लीज आए, अपनी फैमिलीज के साथ आए, बच्चों के लिए भी अच्छा है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, इनफैक्ट कुछ सीख के जाएंगे।
2: अर्ज किया है
3: श्योर,
2: हुस्न बेजार हो नहीं सकता क्योंकि मुजस्मे बोला नहीं करते, हुस्न बेजार हो नहीं सकता क्योंकि मुजस्मे बोला नहीं करते, दिल खोला नहीं करते कभी जो आंसू आ जाए तो खुल के रोया नहीं करते। तुम तो खूबसूरत हो हसीना, हंसो और खूब हंसो, इजाजत नहीं तुम्हें कि दिल जो टूट जाए तो ये राज किसी पे खुला नहीं करते। बहुत शुक्रिया।
1: दोस्तों आपको बता दूं कि इस अंश में प्रस्तुत जानकारी व्यक्तिगत है, SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत। SBS न्यूज के लिए इस अंश को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
0: तो श्रोताओं आप ये जान रहे थे कि किस तरह से स्लैम पोएट्री और रिसाइटेशन कला को एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है। और यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि हमारे श्रोता मनीष जी ने बिल्कुल सही पहचाना उन इंस्ट्रूमेंट्स को। जी हाँ, ये थे गिटार, बांसुरी और सितार।

और श्रोताओं, ये भी बताती चलूं कि जो शुरू में गाना सुनवाया था वो था फिल्म प्रेम पर्वत का और उसके संगीतकार थे जयदेव। बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हमारे कई श्रोताओं की और संदेश भी आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपसे मुलाकात करूंगी कल के कार्यक्रम में, यानी शनिवार के कार्यक्रम में भी आप मेरा साथ देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे अब विदा ले रही हूँ। अनीता बरार का नमस्कार, और आपको छोड़े जा रही हूँ इसी गाने के साथ।

है कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

दिल हिया सुनिए न करे हंस के।

After hit, this is SBS South Asian.

0: Thai.
1: YouTube पे करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
2: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी बात

हीरो देसी हीरो।

0: हर किस झुकेगा नहीं साला।
1: SBS साउथ एशियन,
2: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

पाटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यारा सा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

0: South Asian. Your news from here and hits from home.
1: चले गए सब खाना खा के दारू पी के चले गए
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
3: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
4: चले गए चले गए

वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो, बड़े कम वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा के बाद आते हो।

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: देसी डांस पार्टी फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट्स फ्रॉम 8 ऑन SBS साउथ एशियन।

अखा ना जरा भी अखा होर की तेन देख के बदल गई तोर जी नी चढ़ी जाती लोर लोर लोर लोर जी नी चढ़ी जाती लोर लोर लोर लोर जी पहला लंघ दी दिहाड़ी।